मारे पच्छा श्री हस्तु जू करी और अच्छा राख ले हो मोह राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तमोह पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल योगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दया दक्षण उपजायो आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाध्य कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पढ़ पढ़ की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

संबत सत्रह सहस पणिजा अर्ध सहस फुण तीन के हिज्जा भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चित्रोपखयाने त्रिया चरित्रे मन

ओहरा। जब आए सो प्रभ को भयो, जन्मत राजग आए। अब मैं कथा छिनछेपते, सबहू कहत सुनाए। कब वाच दोहरा, ठाड भयो मैं जोर कर। बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत मैं। जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को। नित उठते अहं संत, अंत लहेंगे मुगत फल।

0: गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु साध संगत जी इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका दी खिमा बुलाओ पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पैसा पैसा सुरजीत सिंह जी कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब वाले उन्होंने सत्कारयोग रागी जथेदार जिन्होंने आप संगत नूं आरती आरता शब्द कीर्तन के द्वारा निहाल किया है। हुण सत्कारयोग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी मुख ग्रंथी गुरद्वारा जामनी साहब वाले आप संगत नूं कथा विचार के द्वारा निहाल करनगे। 16 जुलाई तो सत्संग जी जो मेरी प्री समागम आरगम होणगे जो पहले 2 दिन कथा दरबार सजेगा 18 जुलाई तो 22 जुलाई तक शाम के समय ढाडी तकवीशर दरबार सजनगे 23 जुलाई तो 2 अगस्त तक कीर्तन दरबार सजेगा 1 अगस्त नूं सत्संग जी सलाना नगर कीर्तन है सवेरे 9 बजे गुरु चरणा विच अरदास बेनती करके नगर कीर्तन की आरंभता होगी 2 अगस्त नूं सवेरे 6 बजे खंडे बाटे का अमृत संचार होगा। सो सत्संग दी आप संगतां ने सारे ही समागमां विच हाजरियां भर के सेवावां करके लाहे प्राप्त करने जी। नगर कीर्तन विच सत्संग जी सुक्का प्रसाद कड़ा प्रसाद दे वास्ते देसी घिओ अते डिस्पोजल बर्तनां दी सेवा गुरु घर विखे जरूरत है आप जी समर्था दे मुताबक कर सकदे हो। हुण लंगर हाल दे विच प्रसादे पकाउण दी सेवा अपने समय अनुसार करके सत्संग जी लाहे प्राप्त करने जी बेनती प्रवान करने जी। आओ हुण कथा विचार दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

साध संगत जी इसे तरह उच्चारण करना दुनिया मुकामे फानी इथे विश्राम लाना तहकीक दिल दानी मामसर मुए अजराइल गिरफत है अजरा बोल के ईल बोलना इजराइल नहीं कह देना कई इथे इजराइल बोल देंदे हन ओ उच्चारण नहीं करना अजराइल साध संगत जी ओ फरिश्तियां दी गल हो रही है गिरफत है ये पाठ ग्रिफत है नहीं कहना गिरफत है जिवे उच्चारण किया है ज्ञानी जी ने इसे तरह उच्चारण करना विश्राम ला के दिल हेज ना दानी ए हेज पद ते जमक लानी है।

0: ओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत मैं देवाना भया तीत। इस प्रकार दे वचन कीते ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने। आओ जी सरवण करिए।
1: विशेषता नाल बड़े प्यार सहित उथानका आप जी ने सरवण कीती है। सो साध संगत जी जेड़ी एक गल प्रचलित है भी भंग दे पहाड़े आ चीज मिल गई वह गुरु नानक साहब महाराज जी तो चली हुई वह गल भंग दे पहाड़े बाबर नू गुरु साहब ने राज साध संगत जी दिता सी भंग दे पहाड़े भी भंग दे वटे ए साध संगत जी इतिहासक लिखता मिलदियां हन जिवें ज्ञानी जी ने आप जी नू श्रवण कराया है। ते कई इथे मनदे ने के कहिंदे ने के भंग गुरु साहब जी ने जेड़ी है ओ प्रवान करके ते उस नू राज भाग दिता। नहीं जी साध संगत जी ओदी शरदा जदों उन्हें सचे पातशाह महाराज जी दी उस रब्बी अगमी ताकत नू वेख लिया ते उन्हें गुरु साहब जी दी प्रसन्नता बस हो के कुछ भी साध संगत जी जदों गुरु नू भेट करदे आ ता सचे पातशाह महाराज सिख शरदालू दी शरदा नू वेखदे हन। सो महाराज जी ओदी उस निम्रता भाव नू वेख के ओदे ते साध संगत जी राज भाग दी बख्शिश भी कीती ते नाल ए भी कहा कि जदों तक तुसी इस खिते दे उपर जुल्म नहीं ढाओगे उदों तक तुहाडा राज भाग रहेगा। जिदन तुसी दुबारा जो होने इमनाबाद दे लोकां ते कीता है जिदन करोगे उदन तुहाडा राज नष्ट हो जाएगा। तुहाडियां कुलां जिहड़ियां उह आने वाले समय दे विच जे तुसी ए कर्म माड़ा कर्म करोगे ते उह गर्क जाणगियां। सो साध संगत जी इस प्रकार फिर गुरु साहब जी ने नाल दी नाल ही ए उचारण शब्द करके उचारण करके उपदेश भी दिता ते सिखां नूं ए गल सानू अज श्रद्धालुआं नूं ए गल दसी है कि भंग तों बच के रहना है भंग दा सेवन नहीं करना।

उच्चारण करना मिर्ग मैं, इदा ही उच्चारण करना मिर्ग मेर गमै, उचारण नहीं करना मिर्ग मैं, जिवें उचारण किया ज्ञानी जी ने केसर कुसम मिर्ग मैं हरणा सर्व शरीरी चढ़ना, चढ़ना पाठ पारा करना।

0: हजार आलम इथे विश्राम ला के एक लखाना, एक लखाना पाठ पोथियां च लिखती रूप विच हुण लिखण लग गए हन, पर संप्रदाय पाठ है एक लखाना, जेड़ा लल्ला है ओ खाना दे नाल जोड़ के ते एक अलग करके उच्चारण करना, चंदी हजार आलम एक लखाना।
1: आसपात गाजपात नर है नरेंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद।
0: भाई साहब

0: नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए।
1: नीच जात इथे जमक ला के हर जपतिया जपतिया उत्तम पदवी नीवी जात हुंदियां भी हरि नूं जपण दे नाल उत्तम पदवी प्राप्त कीती। पूछो बिदर दासी सुतै सुतै पाठ पोला ही करना सुतै नहीं कहना सुतै दा अर्थ हुंदा पुत दासी दा पुत्र। पूछो बिदर बिदर दी जिहड़ी दासी है उहदे सुत कृष्ण उतरिया घर जिस आए। साध संगत जी ए विशेष साखी नूं आप जी पढ़ सकदे हो। सो बिदर पाठ भी पोला करना बिदर नहीं करना सुतै पाठ भी पोला करना।
0: हर की अकथ कथा सुनो जन भाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार।

0: करना ऐडे नाल ही उचारण करना भगत रसना ते प्रमाण देंदे हुए गरीब नवाज समझा रहे हन वी वेखो किने किने नाम जपया ते केड़ी केड़ी पदवी प्राप्त कीती है।
1: खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ 3 तिलक कढ़ाए।

जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधिये तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसे होरत बिध लया ना जाई हर तन संचिये पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटिये होर थे होरत उपाय हर तन किते ना पाई हर रतने का वापारिया हर रतन तन विहाजे

0: ना जाई। हर तनकौ उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई।
1: उचक्का ऊड़े नू अगेतर ला के, हर तनकौ उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई।
0: साकती पाप करके बिख्या तन संचया, तिना एक विख नाल ना जाई।
1: विख पाठ कसके करना, विख पोला नी उचारण करना।
0: हलते विच साकत दुहेले पए, हथो छुड़क गया अग्गे पलत साकत, हर दरगह ढोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तने का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोझी पाई। सूही महला चौथा, जिसनो हर

अरदास पहला पाठ होने करके हुण नवीन सरूपां च पास सस्से नूं सिहारी ला दित्ती है, पर पुरातन सरूपां दे विच सस्से दी लां दे नाल ही सारिआं सरूपां दे विच इदां ही दर्शन हुंदे है। इह हुण व्याकरण वालिआं ने सोचिआ कि चाल खंडित हुंदी है उस करके शायद, पर साध संगत दी पुरातन सरूपां दे विच इह पासे पाठ ही शुद्ध है। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगै अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती। बेनंती नन्ने दी टिप्पी ला के बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे पासे पाठ शुद्ध है।

0: देव त्रै गुण रोगी त्रै गुण पाठ संबंधक रूप दे विच इकट्ठा करना लिखती रूप इकट्ठा नहीं पर त्रै गुण त्रै बोल के गुण बोलन ते ज्यादा टाइम नहीं लाउणा ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी इथे विश्राम विच होमै कार कमाई
1: जिन कीए तिसहन चित है बपुड़े हर गुरमुख सोझी पाई होमै रोग सब जगत व्यापिया तिनका जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन का हाओ बलिहारी जिन शिष्ट साजी

मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारों गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो, पश जो उदर भरों

0: नानक कहूं नसे जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे
1: एक पीना दे दस पी हिर ले
0: दो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से नाही चारा
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हु मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास
1: अपनी ईमान पश बहो शाह हो ले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: बस्ते सागर रखे
0: की आज्ञा मन मथ
1: उसके चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: नानक भांत माया के हित
0: सरपर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दिस सो चालन हार
0: लपटर होत अंधा धार
1: कटाऊ स्यों जो लावे नेह
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सपाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या मिथ्या
0: रंग संग माया पेक हस्ता
1: मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत विकारा
1: बेभूते मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: मिथि सत की आरजा
0: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरथा नाम बिना तर अंध
0: मुख आवतता कह दुर्गंध
1: फिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाय
0: एक बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: कृपन के निरार्थ दाम
1: धन तन तेज अन दे कट बस्यो हर नाऊ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत
1: जन नहार प्रभु प्रवीन
0: बाहर भीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश है आप न करे
0: आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप
0: जिसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने तिन जाता
0: नानक निजन चरण पराता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मन
1: आप आप करत नबेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियानप सकल ते रहत
0: सब कुछ जाने आत्म की राहत
1: जिस भावै तिस लये लड़ लाए
0: शांत नंतर रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक जपना।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया, विच दुनिया का।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो रहा गुनगा साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो कल जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद कर नीच

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग गया पे बते।

ओडिशा भव दयाल कृपा करता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसमै कै मैल पाए सी कसमै पावे सो करे मनो चिंतिया सो फल पाए सी।

शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया पर भो मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

देखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजाय बगनी में हरियं करियं करिमल रिहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजोगते।

ब्राह्मण को कर लाभ गोबर चढ़ना जाए। तोती टिका तय जा माली धान लिछा खाई अंतर पूजा पड़े कते संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तुलंदा महला पहला।

खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लर दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मर कबहू न छाड़ खेत।

जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामदि नूर अरसों पुरसों चटी उद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सचा पातशाह सिर साहां दसाहो

0: ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ।
1: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਸਰੀ।
2: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
3: ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲਮ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ।
4: ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਪਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਣ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮੇ ਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, बाकी सब जगह समझ दिच नहीं है, चेते दिच नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं। मनुख की जिंदगी दसदी, इनू निरंकार की समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ए भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया, जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़िया की तरह जन्म होया। चीन दे च कहिंदे ने लाओत्से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़िया की तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ए गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदे ही ब्रह्म ज्ञान। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया। ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन। गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठन की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे, बालक गुरु अर्जन देव जी, इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया बहुता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, इते धुर दरगाहों बैठे होया, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनिया नूं परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इहदे आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ां च इक अद, कदी कदी जन्म सारिया दे बच्चे की तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे च कोई बुढ़िया की तरह पैदा होंदा है। चीन दे च कथा है भई लाभ से बुढ़िया की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे से डुबे नहीं, गर्क नहीं होए, समझ से। जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, जिहड़े मनुख संसार विच डुबन ना, पदार्थां विच डुबन ना, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे होए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिखदे ने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदा है। उहनां नूं कहिंदे ने इहनां दा जन्म ते कमल तो होया, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम देखा तैं डुबे आए, पहले पातशाह जी दा वाक, महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पए, डुबे पए। सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैरदे ने, गौआं भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां ने। पानी विच चीते भी तैर के लंघ जांदे ने। मैं केरला दिश देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे पिया कि नहा के बाहर निकला, हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौआं तैर दियां ने, घोड़े तैर रहे ने, मझां तैर दियां ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मझां ते तैर दियां ने, घोड़े ते तैर दे, हाथी ते तैर दे ने, गौआं ते तैर दियां ने, कुत्ते भी तैर दे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैर दे, तैर दे, मुर्दा ते तैर दे। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे चे सनातन मत दे कोई हिंदू सन अगर चलाना कर जाता है, देही छड़ जाता है, उन्हें जल प्रवाह कर दे, दाह संस्कार नहीं कर दे, जल प्रवाह कर दे। पर जब जल प्रवाह कर दे तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं। क्यों? लाश तैरन लग पैंदी। हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, लेकिन तैरती हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने, मुर्दे तैरदे। पानी का मनुख नाल भी वैर है, अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए, मुर्दा तो नहीं डुबदा। जीव का मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है, सीमा तो वध्या होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर देता, डुब जाता है। हम देख तें डुबे आया, इधर डुब गया। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत वैद डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखते हैं डुबे, महाराज कहते मैं तो देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होगा, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नु असी कहने निर्लेप है, कमल की तरह पानी वधदा है, कमल होर उपर उठदा है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं कि कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खांते हैं डुबे। महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई, धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार विच किरणा दे रहा है, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा है। गुणा तो पता चलदा है, इत्थे जानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते। अगर हृदय दे च गुण आ जान, गुण परमात्मा दे ठीक है, गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है। जितने औगुण होणगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होणगे उतना ही उदी जिंदगी देच चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहे होवेगा। तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चल दी की है सुरत चल दी है, तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है, असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है, शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन गुरु, गुरु की हाजरी पे भर देने, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी, हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी, गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे, सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोत है, ये ते सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एको ही समय, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये स्रोत है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटदी हैं। जिस वक्त मनुख सुनता है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटदी, एक सैकंड दे घटदी। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे, ऐ ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो कर तेका निमक सिमरत जित छूट है। निमक, निमक एक सैकंड है, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथने न समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नूं कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीना, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है, मैं नाम हुण जपा फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल दो साल बाद मिलेगा, इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज गए तत् छिड़े, टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ। हाजर हजूर खुदा है, मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी, मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोर दा, ते वो डॉक्टर नूं कहिंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा, कहिंदा छेती कर जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहना, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवन देन और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ऐ दवाई ले लो ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया, ठीक होने का ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पड़ेगा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है, हंकार देच, काम देच, क्रोध देच, लोभ देच जीना पड़ेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जहां इन्हों मदन किया जा सकता है, बाकी इन्हों का त्याग नहीं हो सकता, जीवन नूं छड़ नहीं सकते, इन्हां दे जीवना ही है। यूरोप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्राइड ने बड़ा निराश किया है, जीवना ही है, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत दे संत गलत कहंदे ने, मन विच राम है, कहंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहंदा कता ही नहीं मन विच हंकार है। कोई इंज कहंदा है, कहिंदा मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं, मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं, मैं मन नूं फोल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने, या कुछ लभण गया मछलियां ने, संख ने, सिपियां ने, मोती ते गहरे कर दे किसे किसे दे हाथां, उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने, कामनावां ने, वासनावां ने, जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने, उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, तन विच मन है मन विच सच, तन विच मन है मन विच प्रभु है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। खेड सारी पहचानण दी है, पहचानण दी है। जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु, चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे, दो साल बाद, ढाई साल बाद, डेढ़ साल बाद बच्चे चल दे, पैर पुट दे, खड़े हो गए। कि चार पांच साल का बच्चा हो बच्चा चले ना, मां बाप नूं चिंता हो जाती है, गल की है, बच्चा खड़ा नहीं होता, पैर नहीं पुटता, चार साल का हो गया, पांच साल का हो गया, डॉक्टरों को ले जाते, वैद्य को ले जाते, तीन साल का हो गया, चार साल का हो गया, मुंह अक्खर नहीं निकल, बोलता नहीं, मां बाप नूं चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है, अक्सर मां ही निकलता है, घर खुशियां मनाई जाए, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਟੇ, ਖੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਨਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ, ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਤੇ ਬਣੀ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤਰਫ ਉੱਡਦੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇਗਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਭੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਥੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣੇ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। میرے کو زبان بھی کوئی نہیں جو میں اپنے بول تیرے تک پہنچا سکا. میرے بول پترا تک پہنچتے ہیں, پروار تک پہنچتے ہیں, متر تک پہنچ جاندے ہیں, پڑوسیاں تک پہنچ جاندے ہیں, اے پربھو تیرے تک نہیں پہنچ. میرے کو اتنی توفیق ہی کوئی نہیں کہ میں بول تیرے تک پہنچا. پہنچ دیئے گل رب تک, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جا کا کہا درگے چلے, مہاراج کہنے جیدا بولے ہویا درگاہ دے چل رہا ہے, پرماتما سن رہا ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کہنے میں ایویں نہیں بولنا, دے کن سنو ارداس جیو, میں تیرے کن وچ گل کرنی ہوئے تھوڑی کرنی تو سن تے میں بول. بھگت بولتے ہیں پربھو سنتا ہے, کیوں انہاں دے بول پربھو تک پہنچتے ہیں. دل چو نکلی ہوئی گل پرماتما تک پہنچتی ہے, زبان تو نکلی ہوئی گل تے صرف کنا تک پہنچتی ہے, نہیں پہنچتی دل, دل تک نہیں پہنچتی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے کول او اکھاں بھی کوئی نہیں جو تینوں ویکھ سکدی ہیں. جو پرماتما نو ویکھ رہی ہیں وہ اکھاں اتنی نرمل ہو جاندی ہیں, اتنی پوتر ہو جاندی ہیں, اتنی سندر ہو جاندی ہیں, وہی نیتر خوبصورت ہیں جنہاں پرماتما وستا ہے. او نیتر تے کروپ نے میلے نے جنہاں دے اندر واشنا ہے, جنہ دے اندر انرتھ. صاحب کہنے وہ سندر نیتر بھی میرے کول نہیں جو تینوں دیکھ سکن. گرو گرنتھ صاحب دے پہلے ٹھیکہ کار بھائی گرداس نے آپ کی گیات لی عرض کرا, میرے دیکھے میری سٹڈی دے جو آیا غالباً 150 شبدوں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے ہیں. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گیانی بلیکھا کھا سکتے سن, لوکی دھوکھا کھا سکتے سن, بھائی گرداس جی نے انہوں نے کھولے. پمن گرو پانی پتا ماتا دھرت ماتا, اس سلوک نو بھی کھول دینے. پمن گرو گر شبد ہے, واہے گرو جپ منتر سنایا, دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بول دے ہیں پمن کر کے بول دے ہیں, دیہی ماٹی بولے پمن. پمن نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پی ہوں پانی کے شریر چ ہے, مٹی کا ڈانچا بھی پیا, پون نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں, بولنا ہی نہیں. بولنا تے پون کر کے, دیہی ماٹی بولے پون. بولن ہار پرم گر اے ہی, بول کے ہی سمبند جڑتے ہیں, بول کے ہی سمبند ٹوٹتے ہیں. کچھ ایسا بول ہے, بول ہوتا ہے کہ اوپرا بیگانہ اپنا ہو جاتا ہے. کچھ زبان چو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول, ایک بول, ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے, شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے, ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے, سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ دے ساری بولاں دی, منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے. یہ بھی میں عرض کر دیا, سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منک کہہ دینا اتنے ساری بول چال ہے جتھے سمبند ہوئے, جتھے سمبند نہ ہوئے کہندا اتنے ساری بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتنے ساری بول چال بڑی چنگی ہے, جتھے نہ ہوئے بھائی ساری بول چال ہی کوئی نہیں. سمبند جڑتے ہیں بولن کر کے, تے بولنا پون کر کے. ان پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کہا, کیونکہ اس کر کے بولنا واہے گرو واہے گرو تائیں رسنا جت سد دی اندر سواس چلن پون ہے. پاویں پانی پیتا ہے, پاویں دھرتی ماں ہے, پر پون تے گرو ہے, سمبند جوڑتا ہے پرماتما. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے, جت سن دھرے پیار کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جڑ رہا ہے. کوئی कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं शब्द। जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने होफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता, क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाण है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस दें। हथा तो कुछ नहीं पता चलता, पैरों तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने होफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन्न कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन्न भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहने देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। ते जिड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्रगुन सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निधगुन सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत, गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत, गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा गल खत्म, मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਮਤਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਦ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੁਰੂ ਐ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਨਾ ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ ਅਸਨਾ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਗਿਆੜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ ਐ ਭੇਡੋ ਐ ਬੱਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਚ, ਪੈਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਕਤਾ ਹੀ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੈਵਲ ਆਈਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੱਥਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਅਸਲੀਅਤ

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: ஆர் ரட்டுத்து இங்குரியா. தர்லே பரா இக் ஷவத் ஜோதிடியானால் லிபிடே ஆயா இக் வாக் பேந்தியாம் தே பரவா ஜாரி கர்தா ஆயா இக் பச்சன் ਹਰ ਸਮਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੇਗਾ ਦੋ ਕਦਮ ਚਲੇਗਾ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਹੇ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਟ ਲੱਖਾਂ ਕੋ ਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਚਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਮਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਅਰਬੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਕਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹਾਏ ਮਾਂ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹਾਏ ਮਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कित्थों लियावा, हैगे ने मनुख कोल पैर, क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहिंदे मेरे कोल ओ हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसे दे हत्थे च मना है, किस दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसे दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसे दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसे दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथे च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावा, जेडे तैनू वेख सकदे ने, इस तों ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसे दी अखां दे च धन है, टपक रहा है लोभ, किसे दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसे दी अखां दे च उसदी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां दे च तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है, ए लाल अखां ही दस रहियां ने, अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है, उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चों समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है, कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी दे जहर भी है, तकनी दे अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेओ अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बह रहे ने, हर एक दे कन बह रहे ने, आवाजां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं है, समुच्चे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने, संसार दी आवाज सुन सकदे ने। निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरश। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनी भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही, पंछियां दिया, पशुआं दिया, मनुखां दिया, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशा, मैनू ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं, इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने, मन लैंदी है समुची वसनीक, उसके बचना उसके बोलों मन लेंदी है, सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचते ने, उत्थे भी सुने जाते ने। कदी कदाई कोई लखा करोड़ा च एक कद खुशकिस्मत इंसान जिसके बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनद निरंकार, उसके बोल परमात्मा भी सुनने पैदे ने, उसके बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, उस जबान में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र में कित्थों लियावां जो तेनूं वेख सकन, और हत्थां दी उह मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कुल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुंग नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता, पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें एक पत्थर नूं कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनूं ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी, ओ जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लैंदा सी और पिठ कर लैंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतिया ने बर्दाश्त किया, चलो खैर सुन दे पाया, चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतिया ने बेनती की थी, फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो, जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो, जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਲਗਭਗ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਗੋਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਏ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 81 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया, तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहंदे ने, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, मैं नेड़े किस तरह आवां। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने, अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कोल हाथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखा ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना आया, जिसने आज ही चलना सीखा तो कितना के चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने, इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा, बां पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने अवगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहता कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देते ने, ना गुनाह नमंद। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता, गुनाह कीता, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जांदा है, गुनाह गुनाह नहीं रह जांदा, पाप धंधा बन जांदा है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं कहीं देने जाता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नु किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, एक पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी, कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पेंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पेंदी है, जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु दी शक्ति किथे, जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा दा पुन प्रभाव किथे, जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल, जैसे वो अखां खोल ले तो डॉक्टर पूछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा, डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा, डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी, अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे ही है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा, जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कहन लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे बहुत चंगा लगे बगलगीर करन नू जी करे, फिर कोई और ऑपरेट भी करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होन नू भी जी करता है, उस तो सदके होन नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है मंगो, तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन, इना अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिनू वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है, सतगुर ए बुजुर्गी सारिया दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares. Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੇ, ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਯਾਤਰੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਨਿਮਿਆ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੜਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ,
धन गोपाल धन गुरुदेव। हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम्ही पूजन योग हैं, धनता दे योग हैं, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगदा, रब भी चंगा लगदा, नहीं ते दोवें नहीं चंगे लगदे। कबीर खुद कहंदे ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। एले अपनी माला, भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नूं समझया कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रकत बिंद करने में आ, तन किवें बणदा लहू तो बिंद तो, ते लहू ते बिंद किवें बणदा है, रोटी तो और किस तो बणदा है, भोजन तो। ये तन रोटी तो बने, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जी भी नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जड़ी प्रबल चिंता होंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करते हैं, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं होंदी। पानी दे ते दरिया भी चलदे ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलदे। पानी दे ते सरोवर भी होंदे ने, झीलां होंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। होर भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है। हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है। नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहंदे ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंद न धीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह। मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक। शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनूं फिर कहण देना, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया,
माखी रकत पिता बिन दारा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बनया रोटी तो, तन बनया रोटी तो, ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, होर कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे, रिज़क दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दीआं रोटियां, अज दीआं नहीं, सत्तां पीढ़ियां दीआं। चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहिंदी है, कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर। ना कर चिंत, चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया है, जगत बनाया है, रिजक दी चिंता ओ करेगा। तू उद्दम ते करना है, चिंता नहीं करनी। रिजक लभना ते है, चिंता नहीं करनी। ना कर चिंत, चिंता है करते। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए ते घर वाले नूं सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह दा इस दा इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा दा घर है, असी उस दे जीव, उनू फिक्र है, उनू फिक्र है। वो साड़ी चिंता दे च है, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साडे नाल संबंध जोड़े हुआ है, सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करिया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनों होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदे गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुध पहले बन जाता है। के पेशे अस्ति फल ए जद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे च होंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लेंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरवाणी फिर इस तरह बयान करती है, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तित मन प्रगट आया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभा आया।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕੀ ਡੋਲਦਾ? ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਡੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਜਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਸ। ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਤਾਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲਜ਼ ਕਰਦੇ। ਰੇਲਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ, ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ, ਲੱਭ ਆਪਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਦਾਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਰੋਟੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਤਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
जमदियां ही मनुखी बच्चे दियां नजरां जो लभदियां ने यकीन जानो रिजक ही लभदियां ने, कुछ भी नहीं लभदी, रिजक लभदी। अस्तन मूंह दे च पै जांदा है, खुश हो जांदा है, प्रसन्न हो जांदा है, रिजक मिल गया। अजे उसके हाथ रिजक कमा नहीं सकते, अजे उसके पैर रिजक तक पहुंच नहीं सकते। तो कुदरत ने नियम बनाया, अजे उसनों रिजक मिलता है मां के हाथों तो, अजे उसनों रोजे मिलती है मां तो। सहजे सहजे हाथ पैर काम करनगे रिजक लभना पेगा, लभना पेगा। और रिजक हर जगह नहीं पिया, जिथे है उथे रिजक खिंच के लै जाएगा। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। मन ने तन की संगत कर ली है तो मन भी समझदा है मेरी भी लोड़ रोटी है, कतई नहीं, कतई नहीं। पेट भर जाता है, मन ते भरदा ही नहीं, तन ते त्रिपत हो जाता है। खांदे दो रोटियां नहीं, चार खा लेंगे, छह खा ले, त्रिपत हो गया, मन ते त्रिपत होंदा। सुन दे होवे कोई कईयां कोल, और कईयां ने मैनू कहा ज्ञानी जी की करिए, पेट ते भर गया, मन नहीं भरिया। स्वाद है, रस है, तन की लोड़ तो है नहीं, भुख तो है नहीं। तन की लोड़ नो मन ने अपनी लोड़ बना लिया, तो फिर की आंदा, खाई जांदा, खाई जांदा। मन की भुख तो मिटदी नहीं, नहीं मिटती। बहुत सारे मुल्कां दा अज मसला हो गया ओवर ईटिंग, जरूरत तो ज्यादा खाना मसला खड़ा हो गया। और साडे देश दे आयुर्वेद आचार्य इंज कहा करदे सन, आहार रोग आहार चिकित्सा। खाना पीना रोग है, खाना पीना अमृत है, खाना पीना जहर है, खाना पीना दारू है। क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है। एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान किया, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे, निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई, गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआ, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवेगी, एक एक बुरकी जहर बनेंगे, एक बुरकी शरीर दे च अनर्थ पैदा करेगी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा, शक्ति अदक बनेगी, लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है।
पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नूं मन ने अपनी लोड़ समझ ले तो उहदे नाल की आउंदा है। तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारिया ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें इकट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोवें इकट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं आउंदा, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह दई है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने सगल श्रिष्ट को राजा दुखी है, सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए दुखी दा दुखी रहे। कारण शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया है? कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा। इस चक्कर च ना पैणा, इह मन वास्ते, इह मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पिया पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़दियां होया भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़दा रहे बाणी। कहिंदे ने मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चें, चिंता दे चें, हंकार दे चें, विकार दे चें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है,
जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है, जन्म तो शरीर दे ना मन विच भजन दी भुख नहीं है, इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है, पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा, संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए तो अखीर दे च पता चलता है कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इस ते भी शुकराना किया, पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार, 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहे हैं, वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है, इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नू मार दिता है, भुख दे ताप नू दबा दिता है। फिर जस उसनू प्रेर दिया नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा, वो खांदा है, कहिंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तंतु ने जबान दे च ओ रस लेंदे, ओ बारीक तंतु जोर दे बुखार करके कमजोर हो जाते, शिथिल हो जाते, रस लैण दी उन्हां च समर्था नहीं रह जाती, कम नहीं करते, तो बंदे नूं भोजन का स्वाद नहीं आउंदा, जदके है स्वाद ही। जो तंतु स्वाद माण सकदे ने ओ रोगी हो गए, रोग करके कमजोर हो गए, शिथिल हो गए, स्वाद नहीं आउंदा, कहिंदा स्वाद नहीं है। भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आउना, इस गल दी पहचान है तन रोगी बीमार है। हुण दूसरा पहलो, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा, रोटी खाण दी वेल नहीं मिली, नहीं खाधे, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करदे ने, महीना महीना नितनेम नहीं कीता, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं कीता, ना घर वालियां नूं अफसोस, ना इहनू अफसोस, क्यों? ना घर वालियां नूं भुख लगदी है भजन दी, ना इस नूं लगदी, घर वाले भी रोगी, ए भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पै जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहिंदे सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना
ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਮੁਨਸਬ ਸੁਦ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇ।

एक पुत्र पिता दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है, एक भरा जितना भरा दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। तो जद अपने तो ही दूर है, आई दूर बिल्कुल दूर, तो अपनी असलियत का पता नहीं चलता। अपनी असलियत का पता अपने नेड़े आन का मतलब अपने विचारां दे नेड़े आवना, अपनी सोचनी दे नेड़े आवना, अपने चिंतन दे नेड़े आवना। मैं की याद करता रहना, मैं की सोचता रहना, मेरे अंदर केड़े विचार चलते रहते। अगर कोई इस नूं देखण वाला है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने गुरमुख है एहो मन आर सी, कोई गुरमुख देखे इते गुरमुख है, इते मान गुरमुख है, इते अपने नेड़े आ गए, अपने विचारां नूं देखण लग पे। इन्हां गंदे विचारां नूं रोज रोज देखदिआं, इस गंदी सोचनी नूं रोज रोज देखदिआं, इस गंदे चिंतन नूं रोज रोज देखदिआं, आखिर इस दे अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। पर बदकिस्मती मनुख अपने नेड़े आउंदा ही नहीं। इस वास्ते शेख सादी साहब कहिंदे तेरे बारे दूसरे दा फैसला गलत होवेगा। दूसरा की जानदा है तेरे की विचार ने, तू की सोचता रहना है। यही जो मैं अर्ज कर दिया 100% लोग दूजियां बारे गलत फैसले करते, गलत फैसले करते। ये पापी है, ये पुन्नी है, ये तो कहण मात्र गल्लां होंगी। पर महाराज कहिंदे ने कहण मात्र खेड नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करते हैं जिस कर्म दे च मन आउंदा है वो अंदर लिखिया जाता है, उसे वक्त लिखिया जाता संस्कार बन जाता है। जिस कर्म दे च मेरा मन है उस कर्म दे संस्कार बन जाते हैं, जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है उसके संस्कार नहीं बनते, अंदर लिखिया नहीं जाता। चोरी अंदर लिखी जाती है, क्यों? उहदे च मेरा पूरा मन आउंदा है, समाज का डर है, कानून का डर है, बाणी का पाठ मेरे अंदर नहीं लिखिया जाता, ना मेरी सावधानी आती है, ना मेरी एकाग्रता आती है, ना समाज का डर, ना कानून का डर। किसी भी शुभ कर्म के अंदर संस्कार नहीं बनते, बुरे कर्मों के बनते, क्योंकि बुरे कर्म नो मनुख पूरे मन नाल करता है। समाज का डर है, कानून का डर है, शुभ कर्म नो मनुख पूरे मन नाल नहीं करता। हर एक कह देंदा की करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं। पर जब तू झूठ बोलदा उहदे च पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं ठगदा है उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं धोखा देंदा उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब जेब कतरा किसी दी जेब कटदा उहदे च पूरा उसका मन आउंदा है। बड़ी भारी एकाग्रता आउंदी। किसी जेब कतरे ने नहीं आख्या जेब कटण लग्या मैं एकाग्र किवें आऊंगा, किसी डकैत ने नहीं आख्या डाका डालन लग्या मैं अपना मन एकाग्र किवें करा, एकाग्र हो जांदा। हर अभ्यासी ने आख्या, हर सत्संगी ने आख्या की करिए मन ते जुड़दा ही नहीं, मन ते एकाग्र ही नहीं आता। कारण क्यों नहीं एकाग्र आता? ना समाज का डर, ना कानून का डर। तो परमात्मा का डर बंदा मन्ने ना तो गल खत्म, सारी जिंदगी कर्म कांड चलता रहेगा, होवेगा कुछ भी। ते पता है कर्म कांड किसनों कहते ने? जिस विच मन पूरा नहीं है, नहीं ये भी मैं अर्ज कर, पूरी भावना है, पूरा मन है, हर कर्म भक्ति हो जाता है, भगवान नाल जोड़ देता है। कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई यकसोई नहीं है, इतने कर्म कांड चलता रहता है। कर्म कांड जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं अनंत जन्मा, अनंत जन्मा तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। ये जिहड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु का जप है, थोड़ा इस नूं सुचेत करना है, ते किधरे इस दे अंदर भुख

पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहेगुरु कहिंदा है, वाहेगुरु दा अंदर संस्कार बन जांदा है। ते जैसे वाहेगुरु दा संस्कार बनदा है अंदर, विकारां दे बने अंदर संस्कार ओ मिटदे ने, खत्म हुंदे। ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, या नाम का संस्कार रहेगा या काम का संस्कार रहेगा, या सबर संतोख का संस्कार रहेगा या लोभ का रहेगा, दोवें इकट्ठे नहीं रहते, एक दूजे नूं मिटा देंदे ने। ये भी मैल्स करते हैं। संतोख और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपया ना पढ़िया बाणी नूं तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा, जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जांदा। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे आ, गलतियां पूरे मन नाल करदे आ, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा है, बड़ी सावधानी नाल करदा है, अंदर बड़ा भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जा, जितना मन दा भाग जागया होया है। विद्वान कहते ने एक भाग जागया नौ ते सुते पैन, सिर्फ एक भाग। वो जिहड़ा एक भाग जागया होया उसनू पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी नौ हिस्से जाग पैंदे। जागया होया मन भगवान हो जाता है, सुता होया मन शैतान हो जाता है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण एक दो नुक्ते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पै है। अगर वाहेगुरु आखण दा रस आण लग पै है तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहेगुरु आखण दा रस आण लग पै है, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पै है, बाणी जपण दे रस आण लग पै है, गुरुद्वारे आण नूं उत्साह पैदा होंदा, उमंग पैदा होंदी है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है, अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हां वो उन्हां संस्कारां विच जीवे हां जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां विच जी रहे हैं, जी रहे हैं, लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे ही संस्कार ने। जैसे मन जुड़दा है नाम दे, कदों जुड़दा है जब भुख पैदा होती है, ये सारे संस्कार मिटदे ने, तो सारा संसार खत्म होता है। वही संसार साड़ा है, उसे अज तक जीवे होते हैं। मनुख नूं पहली दफा अनुभव होता है जिवें मैं मर रहा, खत्म हो रहे। स्याही भी छांदी है, एक नहीं मैनू सैकड़े अभ्यासियां ने कहा असी ते डर दे मारे छोड़ दिता, नहीं कीता, कई चीख भी उठे ने, ऐ की होण लगे ते खत्म होण लग गया। पर कीता की जाए, मन खत्म होण लगा है। अज तक हजारां तरह दे जो अंदर संस्कार पए ने, जिन्हां दे च असी जी रहे सी, ओ खत्म हो रहे। एक नवी जिंदगी दा जन्म आउंदा है, पुरानी जिंदगी मिटदी है। इहनूं कहिंदे ने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया है साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती बनती है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है,
गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुरु के जन्मे है गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदिया जी इस तन तो उच्चा उठ जांदा है, इसनों कहंदे ने जीवत मृतक, मुर्दे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रहिए, बौल ना बौजल राया। स्वास्थ्य चल दे पैने जीवदा पै, जीवत मरे मन दे तल ते मर गया। आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत, लोभ आशत, काम आशत, जो बने संस्कार सन जिन्हां दे जी रहे असी, खत्म। जद खत्म होण लगदी है, भय उसे तरह ही पैदा हुंदा जिवें शरीर खत्म हो रहा है, डर उतना ही लगदा जिवें शरीर खत्म हो रहा है। कई थो वापस मुड़दे ने, एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासियां ने कह दिता मैनू कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है, असी तो छोड़ बैठे हैं, तो खत्म होण लगे सी। मैं ठीक है, खत्म होण लगे सी। अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वो खत्म होण लगी सी। ते जे किधरे डरदे ना भजदे ना, नवा जन्म हो जाना सी, फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी, मां भी रब का रूप दिखाई देना सी, पिता भी रब का रूप दिखाई देना सी, भरा भी रब का रूप दिखाई देना सी, पत्नी पति भी रब का रूप दिखाई देना। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सारा परिवार निरंकार का रूप दिखाई देना सी, ते सारा परिवार की सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देना सी। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद न अनूप। ए विश संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जीवदा रहे तू पहले परिवार दे संसार दे, हुण तू जीवना सी निरंकार दे। जीवदा रहे अज तक तू पदार्थां दे, हुण जीवना सी परमात्मा दे। पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन, इते जमीन आसमान दा अंतर है। पहला जीवन वाकई खत्म होंदा है, द्विज दूजा जन्म होंदा है। तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिवें शरीर की मौत। चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया, तो मैं कह किधरे उस भय नू एक पासे सुट देंदे, किधरे पहले बोध होंदा, बड़ा कीमती अवसर गवा दिता। तो जिन्होंने मैं दसिया कि कोई बने तो डरना ना, तो कई ने रोंदे हो आख्या खेड बनी ने नहीं बनी, उदों डर करके मुड़ गए, वापस हो गए। तो मैं अर्ज करा, ऐसा महसूस होगा अगर कोई अभ्यास करता है मैं खत्म हो रहा, वो जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीव दे रहे हैं खत्म हो गए, एक नवी दुनिया का जन्म आता है। ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आती, ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहती है, महारस बनया रहा है, महा आनंद बनया रहा है। उसे कह देंदे ने हुण असी संसार तो निकल के निरंकार दे चलीन हो गए, हुण पदार्थ तो निकल के गोविंद दे चलीन हो गए, गोविंद दे चलीन होके गोविंदा रूप हो गया, बूंद सागर दे चलीन होके सागर हो जाती है, अलग नहीं रह जाती। दरिया सागर दे चलीन होके वो सागर हो जाता है, गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जाती, वो सतलज ब्यास नहीं रह जाता, वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जाती, वो तो सागर हो जाता है। परमात्मा दे चलीन होके ना मनुख हिंदू रह जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, परमात्मा दे चलीन होके मनुख परमात्मा ही हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परां,
जिस रब दे च लीन हो गया कबीर वो रब मुसलमान नहीं है, वो रब हिंदू नहीं है। कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अम अजबे, नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है परमात्मा तैनो, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तू सारे थावां दे वसदा है, तेरा कोई एक मुलक नहीं, सारा ब्रह्मंड तेरा मुलक है। जैसे जब कोई परमात्मा दे लीन आंदा है, ये सारिया दीवारां गिर जांदियां ने, भाषा की दीवार, मुलक की दीवार, मजहब की दीवार, जात पात की दीवार, तरह तरह के संस्कारां की दीवारां, ये सारिया गिर जांदियां ने, मनुख निरंकार का रूप हो जांदा है। उसे नू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पे करदे ने, गुर किर पा जै नर को कीने, ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद सिंह, ज्यों पाने संग पाने। जिस दिन बूंद सागर विच लीन होंदी है, ओही जाने सागर हो गए, असीम हो गए, हुणे नापी तोली नहीं जा सकदे। असीम होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं असीम होना चाहता। महान होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नूं परमात्मा नहीं मिलिया, रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति है, जीवन मिले परम जीवन की प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, यह जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार का जीवन प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य नूं असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भी तर तू देख विचार, इस अवसर नूं गवाह ना दे गया, ये अवसर हथों चला ना जाए। वारी मिली, एक अवसर मिले, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी दा धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा, उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन सारिया ते बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन, ते असी उसका पूर्ण तौर ते यतन करिए, ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनिया, कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे दी हाजरी भर के दासां ने इत्थों फिर झांसी चले जाना है। सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते, विसाखी ते फिर दासां ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे 500 साल शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना है, अमृतसर, पटियाला, होर पंजाब दे वख वख पिंडां विच 500 साल जयंती के संबंध में दास ने हाजरियां जो है भरनिया ने, ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपने अपने फुलां दी महक लेके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दिती है, जो गुरु ने दिती है, सतगुर रहमत करन इन्हां दी कीर्तन दी धुनां दे नाल वो आप भी करते नाल जोड़न, ते थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको, ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी ले सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी, दूसरी लिस्ट जो नाम है सारे दे सारे प्रबंधक तुहाडे सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण किया सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुक दी शमा फतेह प्रवान करने

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्चार